इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: मारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी और मारी सेली पिंकी हम रामदास कॉलेज दिल्ली।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा अब।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें।

यात्रा से पहले मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Thank you.

सुने कि पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं। दिल कहे मेरा उसे प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे हो गई छोड़ के। चल लेता कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैंने।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गवा

0: पानी पड़ती है।
1: ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चनौर से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चनौर 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar Beats with Harsha Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 पे मजेदार शो सब मैं हूं आपका साथी जग्स। दोस्तों रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बनने के लिए 888-9904-904 इज द नंबर। आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। यहाँ हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सिटे हट धड़काते रहो।

हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: What's up, Jimmy Brother? Aaj ka weather.
1: Radio Chennai.
0: Weather update. Yeah, brother, aaj ka weather kya kehta hai? Aaj ka weather, chaliye aapko batate hain.
1: Radio Chennai. Weather update. Radio Chennai. Weather update.
0: जी हाँ, आज का मौसम होगा बादलों से भरा सा. Everything is हरा भरा क्योंकि summers जो है already दस्तक दे चुके हैं. लेकिन summers की heat की intensity जो है हो गई है कम. तारा राम पम पम. यहाँ 35 से गिरकर 5 डिग्री का माइनस आ गया है और 35 से हटकर आज दिन का टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस. वही मिनिमम में भी गिरावट है 21 से हटकर 19. दिन भर बादल सूरज को ढके हुए रखेंगे. सूरज बीच बीच में झांकने की कोशिश करेगा क्योंकि पुष्पा से इंस्पायर्ड सूरज फायर नहीं वाइल्ड फायर बनेगा. यूवी इंडेक्स आज अभी के लिए वीक है. 71% है ह्यूमिडिटी. 5 किलोमीटर पर आवर है विंड स्पीड. 14 किलोमीटर विजिबिलिटी. 5:24 पर हुआ आज का सनसेट. 7:48 पर होगा आज का सनसेट. जी हाँ, अब आपके बिना नहीं जी सकते तो मेहरबान कदरदान मेरी जान फोन उठाओ. डायल करो 888-904-904. आपके बिना गुजारा नहीं होगा तो मेरे यार हर दिल की धड़कन को जोर से धड़का. मैं हूँ जॉक्स मजदार शो. सब धड़का.

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
1: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तभी व्हाट्सएप पर है। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक जो रहता है वायरल। यहाँ पूरी जनता मिलकर कर रही है ई रिक्शा की बात, क्योंकि ई रिक्शा वाले कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जज साहब, अब ई रिक्शा ट्रेंडिंग में क्यों है?

क्योंकि वायरल रहे इस बात को लेकर कि बहुत सारे लोग एक चाइनीज ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जिस पर ई रिक्शा, कोई भी रैंडम ई रिक्शा कनेक्ट हो जाता है तो उसे ऑफ कर पाते हैं। अब ये फंक्शन जो है, ये जो ऐप है ई रिक्शा के साथ कनेक्ट होकर उसकी बैटरी ऑफ या ऑन करने की क्षमता एक इंसान को दे देता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग ई रिक्शा के वालों के मजे ले रहे हैं। अब मिक्स कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे सिक्योरिटी है, इससे ये है, वही बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया गरीब है, रोजगार है, इनके मज़े नहीं लो, इनको सताव नहीं। और अगर आप भी एक ई रिक्शा ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप QR कोड कर स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर करके इस फंक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। अब जहां समस्या है वहां समस्या का समाधान है। तो अगली बार मीटर डाउन करने से पहले याद रखिए कि बैटरी की सेफ्टी भी अब जरूरी है। सरकार और इस फ्रीक्वेंसी पर और जैसे उसके साथ मजदार शो सब सरे तड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूर्य।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिटार 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, नेवर लेट Your feelings get too deep. People can change anytime. उनके अंदर और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिटी हक्ड धड़का।

0: 是 Zeus， 跟我来啊
1: ，Zeus。
2: Radio Channel 90.4 FM Hardal ke dargan ab enjoy kar rahe hain mazedar show wasab. Wasab show mein Samina hamare saath judi hain likhti hain Samina team Radio Channel is best of all. Thank you so much Samina and God bless you. And dekhiye hum ye kahenge ki koshish karte hain koshish rang tabhi lati hai jab aapke dilon ko baati hai. Once again thank you so much. Shakir hamare saath jude hain likhte hain Shakir sir. एक बिजनेसमैन हूं और आवन जावन में हमेशा रेडियो चुनार सुनता हूं कुछ मेरी पसंद का चले ऐसा सोचते ही चलने लगता है थैंक यू सो मच सो इनकी चॉइस जो है हमारे सॉन्ग्स के साथ है और हमारे सॉन्ग्स जो है इनकी चॉइस के साथ सिंक होते हैं अरे बस मालिक मेहरबान तो गदा पहलवान थैंक यू सो मच भाई हमसे जुड़ने के लिए रबिया हमारे साथ जुड़ी हैं लिखती हैं सर सुपौर से हूँ अभी दिल्ली में हूँ अपना काम कर रही हूँ और यहाँ पर मस्त जॉब चल रहा है मेरा और जब भी रेडियो चुनार सुनने का मन होता है तो ऐप ऑन कर लेती हूँ मतलब सच में आय का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया थैंक यू सो मच रबिया जी थैंक यू सो मच रबिया हमसे जुड़ने के लिए आप भी जुड़े अपनी बात हम तक पहुँचाए 8899904904 नंबर जी आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़का सकते हैं नेचुरल टॉचर्स ऑफ इंडिया आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक क्योंकि भैया ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट और ऐसे ऐसे कुदरती जखीरे यहाँ पर हमारे पास इंडिया में मौजूद है जो लोग या बाकी देश तरसते हैं कि काश हमारे पास होते हैं अब कौन से हैं नेचुरल ट्रेजर्स जो आप नहीं जानते हम आपको बताएंगे लेकिन वो तभी सुनेंगे आप जब पूरा शो आप सुन पाएंगे
3: आहा नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट
2: रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप सुनते रहे हर दिल की धड़कन को धड़काते रहे आज के वो सब शो का टॉपिक नेचुरल ट्रेजर्स ऑफ इंडिया हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्स धड़काते रहो

यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा।

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट.
2: Come on, let me hear you say, come on, everybody say.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

तो सो आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और शो का हिस्सा बनने के लिए 9999904 इज द नंबर। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, बॉलीवुड में क्या हो रही है हलचल खबर पल पल की जानने के लिए सुनते रहिए मजेदार शो व्हाट्सएप, साथ ही साथ टेक वर्ल्ड से अपडेट्स भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। जरा सा इंतजार देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Mr. Zeus.
1: Kon aaya?
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Radio Tron 90.4 FM Mazdar Show. What's up aur what's up show mein Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं। जी हाँ, काला हिरन प्रोड्यूस जिन्होंने कुछ ऐसा बताया कि सलमान खान अब एक बबूला हो गए हैं। अब तो सलमान खान का आओ क्या भी नहीं चल रहा, क्योंकि काले हिरन के प्रोड्यूसर ने कहा आओ आओ दिखाओ क्या है तुम में दम। और एक बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, कहा सलमान खान का कहना है कि बॉलीवुड का भगवान है लेकिन हम नहीं मानते भैया। और इससे पहले धमकी का या लीगल जो नोटिस उन्हें मिली थी वो फाड़ी, और अब कहा है कि 8,000 स्क्रीन्स पर रिलीज करेंगे मूवी सलमान खान। अब ये बात है कि एक बार जो बदनामी हो गई उसके बाद तो लोग किसी की नहीं सुनते, खबर जो है अफवाह जो है उड़ती हुई सभी कानों तक पहुंचती है। बोनस ठोंडस दिमो ठोंड बोनस सासस दिमो ठोंड बस सासस करो क्या। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग इन द बॉलीवुड राइट नाउ। रेडियो चुनाव 90.4 FM हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन से धड़काते रहो।

भैया मेरा बस चलते तो देर ही देर कर देता मैं जाने में, लेकिन क्या करूं, ये मुई घड़ी ये इशारा कर रही है कि मेरे इजाजत लेने का टाइम हो चला है।

Yeah, this is our Jesus signing off for today. अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, रेडियो चुनार सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और हर दिल की धड़कन को धड़काते रहिए. Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, Tata, take care, Ma Salama.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिन.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: असरा हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: गई थी।
1: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम और शो है हंगामा। और देखिए हंगामा जो तो चलता रहेगा, बहुत सी बातें होंगी, कुछ ट्रैक्स की बात हम ये भी बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है, पर समथिंग स्पेशल अबाउट टुडे, समथिंग स्पेशल फॉर टुडे इज नूर। And what is special about her that is ki Fahim Abdullah Arslan Nizami, Kesar Nizami, the veteran artist of Kashmiri music industry, actually ek saath Coke Studio India pe perform kar rahe hain. And mujhe lagta hai ki this is a very big moment for the culture. This is very big moment for Kashmir. Main Wasra Santare, Radio Sunar 90.4 FM. Ye hai har dil ki dhadkan.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं एक वैलिडेशन इकोनॉमी की, यानी कि जो भी नंबर है, हमारा नंबर नहीं बल्कि जो हमें डिजिटल सोशल मीडिया पे हम सिर्फ नंबर गिन रहे होते हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है, और जो उन सब चीज़ों को हम वैलिडेशन इकोनॉमी कहते हैं कि आजकल हम सब वैलिडेट होते हैं कि अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा रीच है या इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिनकी रीच अच्छी हो उनका कॉन्टेंट भी सही हो। पर आज वैलिडेशन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो इस बारे में तो ज़रूर बात होगी कि जो एक्चुअली सेल्फ वर्थ होता है, एक सेल्फ रिगार्ड होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो आपके नंबर से पता नहीं चलती बल्कि आपके जो इखलाक हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट क्या है और आप किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन शो योर सेल्फ वर्थ टू द वर्ल्ड। स्पेशली जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, वैलिडेशन इकोनॉमी की बात होती है, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है स्पेशली, दैट इज रील वर्सेस रियल, कि यानी कि रियलिटी क्या होती है और रील्स पे क्या दिखाया जाता है या इंटरनेट पे क्या होता है। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि कैसे बहुत सारे लोग अपनी एक आर्टिफिशियल दुनिया दिखाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन, जस्ट फॉर द सेक के लोग हमें पसंद करें, जस्ट फॉर द सेक के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो इस बारे में और भी बातें होंगी और

0: आपका क्या इस बारे में ख्याल है, या आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो, नॉर्मल इंसान हो, सिविलियंस हो, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपीरियंस है, शेयर कीजिए।
1: मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, ते पोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल।
0: मैं वास्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और जैसा कि आज हम वैलिडेशन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, भाई ये भी एक इकोनॉमी है, ये भी एक वर्थ है, बट लोगों के लिए जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, बट एक्टिव होने के साथ साथ वो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी जो सेल्फ वर्थ है, वो सोशल मीडिया के कॉन्टेंट और नंबर्स के साथ जोड़ लेते हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड है, बिल्कुल AI, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड की जैसे जो लाइक कनेक्शंस हैं वो जल्दी फॉर्म हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोज भी हैं, बट कुछ कॉन्स ऐसे भी हैं कि वैलिडेशन के लिए इंसान कुछ भी करता है या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, या वैलिडेशन के लिए बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो बहुत ही एब्सर्ड कॉन्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें नंबर्स भी, यानी कि लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, एंड देर आर अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स इन देयर गैदरिंग, बट द पॉइंट इज वॉट इज good content. Even if you are having fun, even if you are showing a lifestyle, या आप एक पर्टिकुलर तरीके से पोस्ट करते हैं, जेन जी हो, मिलेनियल हो, बूमर हो, कोई भी जेनरेशन हो, बट ज़रूरी है कि हम अपनी वो सेल्फ वर्थ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर्स के साथ ना जोड़ें। अगर आपके रील्स पे या आपके जो कॉन्टेंट पे लाइक्स कम आती हैं, व्यूज कम आते हैं, दैट डजेंट मीन इट्स नॉट अ गुड कॉन्टेंट। एंड ये भी ज़रूरी है समझना कि हमारी जो वर्थ है, हमारी जो एक कीमत है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं दर्शा सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिग्गज हैं, जो बहुत अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो आर्ट में हो, स्पेशली अगर वो गाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, रील्स होती हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं, और वो लोग नहीं देखते फॉर एग्जाम्पल, या उनकी रीच अच्छी नहीं होती, तो वो हमें ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए विद द नंबर्स। एंड आप भी बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या नंबर्स डिसाइड योर वर्थ और इट्स जस्ट नंबर्स? मैं वास्तव सुंदरी की रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।
3: ओह

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM. और जैसे कि हम वैलिडेशन इक्वेशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे रुक जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है एंड हाउ और एक्चुअली द ह्यूमन बिहेवियर कैसे ऑल्टर होता है हमारी सराउंडिंग से. सबसे पहले तो कंपैरिजन, जब भी हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो वी कंपेयर आवर सेल्स टू एवरीबडी अराउंड एंड टेल देम कि भाई अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो इनसे बेहतर नहीं है, हम और बेहतर कर सकते हैं, हमें और बेहतर करना चाहिए. बेहतर करने में लाइक इशू नहीं है, बट द पॉइंट इज, द ओनली पॉइंट इज कि आपको कैसे अपना ख्याल रख कर अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना है, उसके बाद यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोशल कॉज. और क्या आपको ऐसा लगा है कि एक इंसान वो अप्रूवल लूप में फंस जाता है, एक लूप साइकिल में फंस जाता है कि हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है, लाइक्स आ रही हैं, शेयर्स आ रही हैं, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं, और ये सब चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है. 8899904904 नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर जल्दी से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय मैं वसरा और आप सुन रहे थे रेडियो सुना 90.4 एफएम पे शो हंगामा. बट देखिए अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि कल फिर से शुरू होगी बराबर 2 बजे. 2 से 4 हमारा साथ होता है. मैं वसरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।

0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM, एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Ok. Ton mari, Major. Lagta hai roo mein reh gaya.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है, और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
4: 90.4 FM।

0: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: पंप अप द बगड़ा,
2: व्हाई नॉट
3: पंप अप द बगड़ा,
2: व्हाई नॉट
3: यू वांट टू बी टॉप ऑफ द पॉप्स,
1: पंप अप द

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
1: 90.4
0: एफएम।
4: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: マネーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

प्राइवेट, जिम, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आके पी भी

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारा रा रा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।